0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.
2: प्लीज मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का एक चांस दो। हम दोनों के पास गुजरा हुआ कल नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मौका ना दो और हमारा आने वाला कल भी हमसे छिन जाए।
3: तुमने जो कुछ भी किया शेखर, उसके बाद खुद पे से भरोसा उठ गया। समझ में नहीं आता क्या सच है और क्या झूठ। प्लीज शेखर, लेट मी गो।